गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। तो दोस्तों, घड़ी में ठीक बज चुके हैं 10 यहाँ और मैं हाजिर हूँ आपकी सुबह की चाय को थोड़ा और कड़क बनाने के लिए, यानी कि आपके अपने शो नॉनस्टॉप गपशप में। और दोस्तों, 10 बजते ही घर की पहली शिफ्ट तो खत्म हो गई, यानी कि झाड़ू पोछा, नाश्ता और ऑफिस की भाग दौड़। लेकिन आज मैं बात करने आई हूँ एक ऐसे मुद्दे पर जो देश के हर दूसरे घर की अलमारी, मचान और बालकनी में छिपा होता है। तो दोस्तों, मुद्दा यह है कि घर का वो एक सामान जो बिल्कुल खटारा हो चुका है, लेकिन मजाल है कि उसे कोई फेंकने दे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर घर में एक ऐसा टीवी

0: जोर जरूर होता है जो सीधा बटन दबाने से कभी नहीं चलता, जब तक कि उसके पिछले हिस्से पर दो चार थप्पड़ ना मारो या फिर वो चैनल नहीं बदलता। और वो फटी हुई टी शर्ट जो अब सीधे पोछा बनने की कगार पर है, लेकिन उसके मालिक का कहना है अरे इसमें जो कम्फर्ट है ना वो नए कपड़ों में नहीं। तो जनाब आज दिल का गुबार निकालने का दिन है। जी हाँ, क्योंकि स्टूडियो की फोन लाइन्स खुल चुकी है। नंबर है 03322132213 1341। बिल्कुल, और मुझे बताइए कि आपके घर का वो कौन सा अजूबा या कबाड़ है जिसे सिर्फ आप अपने फेंकना नहीं चाहते, लेकिन घर का कोई सदस्य है उसे जान से ज्यादा संभाल कर बैठा है। तो दोस्तों फोन घुमाइए, और जब तक आप मुझे अपनी बातें अपनी सोच आकर बताते हैं तब तक क्यों ना अगले गीत की ओर रुख किया जाए। तो दोस्तों आज मैं हूं आपके साथ आपके अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति लेकर कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। तो दोस्तों मैं सवाल फिर से दोहरा दूं कि आपके घर का वो कौन सा अजूबा या कबाड़ है जिसे सिर्फ आप फेंकना चाहते हैं, लेकिन घर का जो कोई सदस्य है उसे जान से ज्यादा संभाल कर बैठा है। बिल्कुल, तो दोस्तों फोन घुमाइए, और घुमाते हुए क्यों ना अगले ट्रैक की ओर रुक किया जाए।
1: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर।

तो दोस्तों वेलकम बैक टू नॉन स्टॉप गपशप। तो दोस्तों बज रहा था हवन करने और मुझे लगता है कि घर के उस पुराने कबाड़ के सामने बैठकर कई बार सच में हवन करने का मन ही करता है। तो दोस्तों इस गीत के दौरान एक कॉलर से हम जुड़े थे, उन्होंने अपना नाम बताया था सुमित और उन्होंने कहा था कि उसके घर में एक 15 साल पुरानी दीवार घड़ी है और वो दिन में कम से कम 20 मिनट पीछे चलती है और उसके पिताजी उसमें हर हफ्ते नई बैटरी डालते हैं लेकिन घड़ी बदलने का नाम नहीं लेते क्योंकि उनके पापा कहते हैं कि मेरी पहली नौकरी के पैसे से खरीदी थी और इसमें समय नहीं मेरी यादें चलती हैं और उनकी यादों के चक्कर में पिछले महीने की तरह उनकी ट्रेन छुट्टे छुट्टे बची थी। यानी कि अमित जी ने बहुत ही अपनी दुख भरी बातें, यानी कि थोड़ी मज़ेदार भी है या यूं कहूँ तो बहुत ही अच्छी बातें बता कर गई। किस तरह वो घड़ी तो बदलना चाहते अपने घर की दीवार घड़ी को लेकिन उसके घर वाले जो है वो बदलने नहीं देना चाहते क्योंकि इसे कहते हैं इमोशनल अटैचमेंट। तो चलिए दोस्तों अगर आपके घर में भी ऐसा कोई इमोशनल ऐसे ही अटैचमेंट रखा है तो फ़ोन मिलाइए। और दोस्तों अगले गाने उन तमाम चीज़ों के नाम जो घर में चलती रहे या ना रहे पर रौनक बनाए रखती है। तो दोस्तों स्टूडियो में समय हो चला है 10:16 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप अपनी दोस्त ज्योति के साथ सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर।

0: तो चलिए दोस्तों हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके, तो ये सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार, आप लाइन पर हैं?
1: हाँ
0: जी नमस्कार। हेलो मोनिरुद्दीन जी, आप ऑन एयर हैं?
1: हाँ ठीक है।
0: हाँ तो बताइए कि आप क्या बातें करना चाहते हैं, के क्या बताना चाहते हैं?
1: वो जो रेडियो का बात बोला है।
0: जी जी जी
1: ऑन एयर तो नहीं आया है, वो तो गाना बजता है।
0: नहीं आप ऑन एयर हैं मोनिरुद्दीन जी, आप ऑन एयर हैं। जी बिल्कुल। अब आप बताएं कि आपने जो रेडियो के बारे में मुझे बताया, तो आप उन बातों को हमारे सभी श्रोताओं के साथ साझा करें थोड़ा, कि किस प्रकार आप अपने रेडियो से प्रेम करते हैं, इमोशनल अटैचमेंट से जुड़े हुए हैं। हेलो
1: गुड मॉर्निंग ज्योति जी।
0: गुड मॉर्निंग,
1: मैं मुनीरुद्दीन लश्कर बात कर रहा हूँ दक्षिण संग्रह लाहौड़ से।
0: जी आपका स्वागत है।
1: देखिए ज्योति जी, उसी टाइम पर मेरा पिताजी का चिना हुआ एक रेडियो था, वो बड़ा बक्स का रेडियो है, जो उसी टाइम को मार मार के चलता है।
0: जी
1: उसी टाइम के मार मार के चलता है, लेकिन अभी वो खराब हो गया। लेकिन वो तो नया जमाना का रेडियो आ गया। लेकिन घर वाला चाहता है वो जो खराब हो गया वो फेंक दो, लेकिन मेरा वो पिताजी का एक निशानी है, अभी तो हमारे पिताजी नहीं है, लेकिन वो जो रेडियो था
0: जी,
1: वो हमारी एक निशानी बन गया, हमारी एक अपना बन गया, इसलिए मैं उसको स्थिति बनकर वो रख देता हूँ। लेकिन उसी उसको इज्जत किसी को पर नहीं है, लेकिन मेरा उसे बहुत कीमत है, कीमती है मेरे
0: बिल्कुल,
1: लिए
0: बिल्कुल, ये बहुत ही

0: मिलती है।
1: थैंक यू मैम
0: जी, थैंक यू सो मच मनीरुद्दीन जी, आपने इतनी अच्छी सोच साझा की, थैंक यू। तो दोस्तों मनीरुद्दीन जी ने तो बताया, लेकिन सच बताऊं तो एक बात माननी पड़ेगी कि भारतीय माताओं के पास भी एक सुपर पावर होती है, वो है प्लास्टिक के डिब्बे को अमर कर देना। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि वे जो होते हैं वे घर के उस अनोखे सामान को, जिसे फेंकने की तो बात करते हैं लेकिन घर में महाभारत छिड़ जाती है, और जैसे ही इन डिब्बों को अगर फेंकने की बात की जाए तो जैसे मैंने कहा कि घर पर महाभारत होना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन दोस्तों जब बाहर से आए हुए आइसक्रीम या किसी भी प्रकार के डिब्बे को वो डस्टबिन में नहीं देखा जाता, वो धुलने के बाद उसमें या तो कुछ सामान रखी हुई जाएगी या फिर वो फ्रिज में सजी हुई देखी जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये खास जो होता है ये कहीं ना कहीं जो सोपीस की तरह भले ही इस्तेमाल ना हो, लेकिन ये बेहद घर पर ये नॉर्मल सी आम सी बात है ये सब दिखना। तो चलिए दोस्तों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

तो है दोस्तों, अपने अगले कॉलर से जुड़ते हैं और सुनते हैं कि वो क्या यादें साझा करना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो, तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मैं बातें कर रही थी कि ऐसा कौन सा सामान, बिल्कुल ऐसा कौन सा सामान है जो अभी भी आप फेंकना तो चाहते हैं पर घर के लोग जो है उसे कबाड़ को फेंकने नहीं देना चाहते हैं। तो दोस्तों, बातें करते करते वक्त हो चला है बिल्कुल 10:30, लेकिन बातों का सिलसिला यहाँ समाप्त नहीं होने वाला, क्योंकि बातों और गीतों का सिलसिला चलने वाला है ठीक सुबह के 11 बजे तक। तो दोस्तों, यूँ ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए सिर्फ और सिर्फ कार्यक्रम नॉन स्टॉप कपशप में अपनी दोस्त ज्योति के साथ, सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर।

0: चलिए दोस्तों अपने अगले कॉलर की ओर रुख करते हैं। हेलो,
1: सुनते हैं?
0: बिल्कुल मैं सुन पा रही हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है?
1: हाँ हाँ ठीक है
0: जी बिल्कुल।
1: क्या रेडियो रेडियो माने मैं बचपन माने बरस हो गया हम रेडियो सुनता है, अभी 64 हो गया। अच्छा वो जो माने बांग्ला में गीतिका बोला एक प्रोग्राम था बांग्ला, अच्छा। बांग्ला गाना देता है आधुनिक गान वो भी सुनता था, और अभी एक माने रेडियो सेट है वो खराब हो गया, हम एफएम खराब हो गया, अभी वो एफएम माने अभी बसाया
0: बिल्कुल, लेकिन
1: वो हाँ सुनिए ना
0: जी सुनिए,
1: ब्रॉडबैंड का रेडियो है
0: जी,
1: वो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया सुनने के लिए हम रिले सुनने के लिए खरीद किया।
0: अच्छा
1: वो हो गया 15 वर्ष हो गया,
0: 15 साल हो गए, सच में बहुत बड़ी बात है।
1: ब्रॉडबैंड का रेडियो है
0: जी,
1: 16 से 13 से 16 बैंड माने चलता है ऑस्ट्रेलिया,
0: ये तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक आपने अपने श्रोताओं को अपना नाम नहीं बताया।
1: हाँ मैं अरूप बोल रहा हूँ हावड़ा से
0: जी। अरूप जी थैंक यू सो मच आपने अपनी,
1: अच्छा सुनिए ना
0: जी, जी।
1: बोली अच्छा हमको पुराना गाना दीजिए, हम पुराना गाना का भूखा है।
0: अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि आपकी इस ख्वाहिश को मैं पूरा करूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए,
1: धन्यवाद।
0: तो चलिए दोस्तों बातों और गीतों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

0: तो चलिए दोस्तों आप अगले कॉलर की ओर रुख करते हैं।
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार।
1: हाँ नमस्कार नमस्कार, मैं पूर्व वर्धमान बुधपुर से प्रवीर कुमार मंडल बोल रहा हूँ, पानागढ़ आर्मी देश का अंदर से।
0: जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: हाँ
0: जी जी बताइए तो। हाँ, अब आप बताइए कि आपका घर का ऐसा कौन सा कबाड़ है जिसे आप तो फेंकना चाहते हैं लेकिन घर वाले जो है उसे फेंकने नहीं देना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा हुआ हो।
1: तो हाँ मैडम, घर वाले तो देखिए हमारा साथ जुड़ा हुआ है, तो हम लोग तो घर में रहते हैं लेकिन घर से दूर रहते हैं, पानागढ़ आर्मी कैंप में अभी
0: अच्छा
1: फिलहाल छोड़ के सब को छोड़ के हम है, तो आर्मी में वो कल बॉर्डर का वो जो गाना है मैडम वो यदि सुनाते हैं तो हमारा आर्मी भाई लोग जो है सब सुनेंगे है इसलिए।
0: जी बॉर्डर फिल्म का कौन सा गीत घर का पाओगे? जी जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी। जी
1: ठीक है
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो दोस्तों कुछ लोग घर से दूर रह के भी घर से जुड़े हुए हैं बिल्कुल, और कहीं ना कहीं उन्हें घर की याद तो सता ही रही है। तो इसी कारण से दोस्तों क्यों ना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले गीत की ओर रुक किया जाए। अगले जो गीत है वो है कोकिलाकंठ लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ में।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

तो दोस्तों बातों बातों में घड़ी की सुइयां 11 पर आ पहुंची हैं और ये आज का ये एक घंटा कब हवा हो गया पता ही नहीं चला। लेकिन जाते जाते बस एक बात तो समझ में आई कि जो चीज़ें हैं वो हम फेंकते नहीं, क्योंकि हमारा उन पुरानी चीज़ों से, हमारा उनसे जुड़ी अपनी अपनों की यादों से एक अटूट नाता बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि हर सुबह ठीक 10 बजे आपका और ये हमारा खूबसूरत रिश्ता बन चुका है। बस इसी मीठे एहसास को दिल में संजोए रखिए। फिर कभी ठीक 10 बजे ऐसे ही हाजिर हो जाऊंगी मैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप लेकर, कुछ नए किस्सों और ढेर सारे तराने लेकर। तो दोस्तों चलते चलते छोड़कर जा रही हूँ आपको फिल्म आवारापन के, जी हाँ, इस बेहद रूहानी नगमे के साथ, जिसे सुनते ही दिल खुद ब खुद कह उठता है, तेरा मेरा रिश्ता पुराना। तो दोस्तों जाते जाते बस इतना ही कहूंगी कि अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट संदोष ज्योति, जी हाँ, आप सभी से लेती हूँ इजाजत, लेकिन ठीक 11:10 पर आऊंगी कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद लेकर, यहाँ नहीं, जी हाँ, 100.1 FM गोल्ड पर। तो दोस्तों तब तक के लिए अपनी दोस्त ज्योति को दीजिए इजाजत और जाते जाते इस मधुर तराने को छोड़े जाती हूँ। तो दोस्तों सुनते रहिए, साथ बने रहिए सिर्फ 107 FM रेनबो पर।

3:10 है, सूर्य की घड़ी का समय 107 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है तीन का तड़का, जिसमें मैं और आप हम दोनों मिलकर लगाते हैं तड़का हर रोज इसी कार्यक्रम में। वैसे आज मैं हूँ आप सभी श्रोताओं के साथ, लेकिन दूसरे दिन आप तड़का लगाते हैं दूसरे रेडियो दोस्तों के साथ मिलकर। तो

एक्सरसाइज एफएम रेनबो चैनल पर शुरू हो चुका है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया है एक्सरसाइज एफएम रेनबो के अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारे ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। और आज की इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपके साथ है, जी हाँ, सुनने सुनवाने के लिए आपके साथ जुड़ी है आपकी रेडियो दोस्त शर्मिशा, और रहूंगी इस कार्यक्रम के साथ पूरे शाम के 4 बजे तक, क्योंकि इस कार्यक्रम का साथ ही होता है 4 बजे तक। और बातें होती हैं इस कार्यक्रम में सारे के सारे, जी हाँ, फिल्मों से भरी हुई, यानी कि बॉलीवुड दुनिया में आखिर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सारी गपशप करते हैं हम इसी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं के साथ। तो चलिए, गपशप करने का सिलसिला चलता रहेगा इस कार्यक्रम में, और शुरुआत हुई इस कार्यक्रम की बहुत ही प्यारे से एक गाने के साथ। और यूं ही एक से बढ़कर एक तराने हैं आप सभी श्रोताओं के इंतज़ार में कि कब आप तक ये सारे तराने पहुंचेंगे। तो जुड़े रहेगा इस कार्यक्रम के साथ, और होती रहेंगी बातें उन फिल्मों को लेकर जो कि रिलीज़ हो चुकी हैं और जो फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं। वैसे तो आज है गुरुवार और बस एक ही दिन बाकी है, फिर एक बार इंतज़ार ख़त्म होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि इंतज़ार में है नई फिल्मों के रिलीज़ होने के। तो चलिए, बातें होंगी बहुत सी फिल्मों को लेकर। फिलहाल रुख करते हैं एक फिल्मी गीत की ओर, और फिलहाल सनम पुरी और शिप्रा गोयल की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा सा तराना आप सभी सुनने वालों के लिए सुन रहे हैं कार्यक्रम 3 का तड़का। तो चलिए, मैं और आप मिलकर लगाते हैं तड़का, कुछ बातों का तो कुछ गीतों का।

सनम पुरी और शिल्पा गोयल की आवाज़ में सुन रहे थे आप इस गीत को। और फिलहाल स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 3:18 है, स्टूडियो की घड़ी का समय। जुड़े हुए हैं आप आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम तीन का तड़का के साथ और सुन रहे हैं आज आपकी रेडियो दोस्त शर्मिष्ठा को। और चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जैसे कि हम बात करते हैं इस कार्यक्रम में उन फिल्मों को लेकर जो कि या फिर रिलीज़ हो चुकी होती हैं या फिर रिलीज़ होने वाली होती हैं। तो चलिए फ़िलहाल तो हम बात कर लेते हैं उन फिल्मों के बारे में जो कि रिलीज़ हो गई है, यानी कि 4 सितंबर को जो फिल्में रिलीज़ हुई हैं और उनका रिएक्शन आखिर लोगों के बीच में कैसा रहा है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मिर्ज़ापुर द मूवी, इस फिल्म के लेकर हम बात करेंगे। और सिनेमाघरों में 4 सितंबर को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। और कलाकारों की अगर मैं बात करूं तो पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, जितेंद्र कुमार, रवि किशन जैसे कलाकारों को अभिनय करते हुए देखा गया था इस फिल्म में। और अगर लोगों के रिएक्शन की मैं बात करूं तो लोकप्रिय वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर का ये जो फिल्म है अवतार, जी हाँ, फिल्मी अवतार 4 सितंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज़ हो चुका है और इसे दर्शकों और फैंस सिनेमाघरों में ज़बरदस्त रिएक्शन मिला है। और जी हाँ, पॉजिटिव साइंस भी काफ़ी ज़्यादा मिले हैं, यानी कि लोगों को ये फिल्म जो है वो पसंद आई है। लेकिन पसंद आखिर किस वजह से आई है, क्या ये आप जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए आपको बताऊं कि लोगों को खासकर ये जो फिल्म है ये पसंद आई है, उसका कारण ये है कि इसके दमदार डायलॉग एक कारण है। जी हाँ, इस फिल्म के जो डायलॉग्स हैं उन्हें लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। इसके अलावा पुराने किरदारों की बड़े पर्दे पर फिर से वापसी हुई है, ये चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा भाई है। और इन दो कारणों से मिर्ज़ापुर द मूवी जो है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। और आने वाले समय में ये फिल्म आखिर कितना बिजनेस करती है ये तो बस इंतज़ार करके ही देखना होगा, लेकिन फ़िलहाल हम इंतज़ार नहीं करेंगे और सुनाऊंगे आपको एक बहुत ही प्यारा सा तराना। और तराना जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही रुक करेंगे हम, एक और फिल्म को लेकर बात करेंगे जो कि फिर एक बार 4 तारीख को रिलीज़ हो चुकी थी। और फिर से रिलीज़ होने के बाद आखिर दर्शकों ने इस फिल्म को किस तरीके से लिया, रिएक्शन क्या रहा लोगों का, क्या नहीं रहा, कौन सी चीज़ें इस फिल्म में पसंद आई नहीं आई, ये सारी बातें होंगी। लेकिन फ़िलहाल अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये प्यारा सा तराना आप सभी सुनने वालों के लिए।

0: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति।
1: तीन बजकर 31 मिनट है, स्टूडियो की घड़ी का समय 107 FM रेनबो परियोजना प्रस्तुति में फिर एक बार आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। लेकर आए हैं एक नई योजना, आज बात करेंगे स्किल इंडिया मिशन को लेकर। स्किल इंडिया मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को उद्योग अनुकूल तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाना और उनकी कार्य कुशलता में सुधार करना है। मुख्य उद्देश्य और विशेषताओं की अगर बात करें तो युवाओं को उनकी पसंद और बाजार की मांग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करना, इसके अलावा कामगारों के कौशल को नया रूप देना और आधुनिक तकनीकों के साथ उनका उन्नयन करना, देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही उपयोग कर समग्र आर्थिक उत्पादकता को बढ़ावा देना। स्किल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है, जिसे देश के युवाओं को कौशल सेट के साथ सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है, जो उन्हें अपने कार्य वातावरण में अधिक रोजगार योग्य और अधिक उत्पादक बनाता है। प्रमुख योजनाओं की अगर बात की जाए तो ये मिशन कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तहत कई प्रमुख योजनाओं के माध्यम से चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं को मुफ्त अल्पकालिक प्रशिक्षण अर्थात शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेनिंग और प्रमाणन प्रदान करना है। इसके अलावा जन शिक्षण संस्थान के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कौशल आधारित शिक्षा देना, राष्ट्रीय शिशुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत युवाओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण से जोड़ना है, और इसके अलावा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत पारंपरिक और आधुनिक ट्रेंडों में तकनीकी प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण करना है। एक सौ सात एफ एम रेनबो परियोजना प्रस्तुति आज यहीं तक। बात कर रहे थे स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत। कल फिर से इसी जगह इसी चैनल पर परियोजना प्रस्तुति लेकर फिर से हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए रुख करेंगे फिल्मी गीत की ओर।
0: परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

3:20 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में 107 FM रेनबो पर। आप सभी श्रोताओं का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है 3 का तड़का। और चलिए फिर एक बार तड़का लगाते हैं बॉलीवुड की उन फिल्मों को लेकर जो कि रिलीज ऑलरेडी हो चुकी हैं। और फिलहाल बात करूंगी

फिल्म जीवन भीमा योजना, जी हाँ, इस फिल्म के बारे में और रिलीज हो चुकी थी पिछले हफ्ते। कलाकारों की अगर मैं बात करूं तो अरशद वारसी के साथ विजय राज की बेहतरीन अभिनय को हमने देखा था। और आपको क्या लगता है कि जिस फिल्म में अरशद वारसी जैसे कलाकार मौजूद हों तो उस फिल्म की रेटिंग आखिर क्या हो सकती है, उस फिल्म को लेकर लोगों में आखिर किस तरीके का रिएक्शन हो सकता है? अगर आपने फिल्म को देख ली है तो फिर खैर आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस फिल्म के रिएक्शन के बारे में लोगों का क्या कहना है नहीं कहना है। लेकिन जिन्होंने इस फिल्म को अभी भी नहीं देखी है, खैर इस फिल्म को ना देखी हो लेकिन अरशद वारसी ऐसी बहुत सी फिल्में हमने देख ली हैं, है ना। और शायद ये अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है कि जिस फिल्म में जिन जिन फिल्मों में अरशद वारसी के अभिनय को हमने देखा है वो हिट हुई ही हुई है, है ना। और चलिए फिलहाल इस फिल्म के रिएक्शन को लेकर कर लेते हैं बात। ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रही है, जी हाँ, एक ऐसी फिल्म जिसमें कॉमेडी भी है और ड्रामा भी भरपूर तरीके से भरा हुआ है, यानी कि फुल एंटरटेनमेंट वाली मूवी ये है। और 4 सितंबर को इस फिल्म को रिलीज़ कर लिया गया था कि और अगर रिएक्शन की बात करें तो अरशद वारसी और विजय राज की जोड़ी को दर्शकों से अच्छा खासा रिएक्शन मिला है। और जी हाँ, जिस फिल्म में कॉमेडी हो, ड्रामा भरपूर तरीके से मौजूद हो, उस तरह की फिल्में कम ही लोगों को पसंद नहीं आती है, ऐसा होता है ना। और लोग जो है वो मनोरंजन के लिए ही तो फिल्मों को देखते हैं। और कई सारी फिल्मों में लव स्टोरीज़ से भरी हुई फिल्में होती हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ एक फिल्में ऐसी भी हैं जिनमें कॉमेडी भरपूर तरीके से है और एक तरीके से कहा जाए तो पूरा पूरा एंटरटेनमेंट जो है वो हो जाता है इन फिल्मों को देखकर। तो चलिए, ऐसे ही कुछ रिएक्शन लोगों के बीच में है इस फिल्म को लेकर। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और बात करूंगी धमाल 4 को लेकर, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा तराना श्रेया घोषाल की आवाज़ में।

अगली रिलीज हुई फिल्म या फिर वेब सीरीज के बारे में आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले रुख करते हैं हैप्पी बर्थडे वाले सेक्शन की ओर और आज बात करना चाहूंगी प्लेबैक सिंगर चिन्मय श्रीपदा को लेकर। मनाती हैं अपना हैप्पी वाला बर्थडे और चिन्मय मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय गानों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड में भी कई सुपरहिट और यादगार गाने दिए हैं। और उनके गायन की शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो साल 2002 में उन्होंने साउथ इंडियन फिल्मों में गाने से अपने करियर की शुरुआत की थी और बॉलीवुड में भी उन्होंने धमाकेदार बहुत से गाने गाए हैं। जी हाँ, बॉलीवुड में उनके संगीत करियर की अगर बात करें तो उन्होंने एआर रहमान, विशाल शेखर और शंकर एहसान लॉय जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया। हिंदी गानों की अगर बात की जाए तो 2007 में रिलीज हुई थी फिल्म गुरु और उस फिल्म में एक गाना है जिसके बोल हैं तेरे बिना। इसके अलावा 2014 में फिल्म रिलीज हुई थी जी हाँ टू स्टेट्स और उस फिल्म का भी एक और बहुत ही प्यारा सा गाना है जिसमें आवाज़ है चिन्मय श्रीपदा की और बोल है मस्त मगन। तितली याद है वो वाला गाना? जी हाँ, वही वाला गाना। फिल्म रिलीज हुई थी साल 2013 में। जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस का वो गाना है। और इसके अलावा साल 2014 में हंसी तो फंसी फिल्म से जहनसीब गाना तो आपने ज़रूर ही सुना होगा। जी हाँ, उस गाने में भी चिन्मय की खूबसूरत मधुर आवाज़ हम सब ने सुन रखी है। इसके अलावा 2010 की अगर मैं बात करूँ तो मैया यशोदा, जी हाँ, फिल्म झूठा ही सही इस फिल्म से ये गाना था चिन्मय की आवाज़ में। तो इतने सारे गानों में हमने चिन्मय की मधुर आवाज़ को सुना है और चिन्मय आज मनाती है अपना हैप्पी वाला बर्थडे। और चलिए उनके आने वाले भविष्य के लिए उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हुए सुने एक प्यारा सा तराना उन्हीं की आवाज़ में।

3:50 होने को हैं और जल्दी से आपको वेब सीरीज के रिलीज होने की बात बता दूं। जी हाँ, धमाल 4 की बात करने जा रही हूँ, जिसमें कलाकारों की अगर बात करें तो अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख के अलावा जावेद जाफरी के बेहतरीन अभिनय को देखा जा रहा है। और कॉमेडी फ्रेंचाइजी धमाल का चौथा भाग 4 सितंबर को रिलीज हो चुका है। OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे देख सकते हैं और सोशल मीडिया और दर्शकों के बीच इसे हल्की फुल्की कॉमेडी के तौर पर मिला जुला रिएक्शन लोगों का मिल रहा है। इसके अलावा चलिए बात कर लें दृश्यम 3 के ट्रेलर को लेकर। अभिषेक पाठक और के डायरेक्शन में बनी दृश्यम जी हाँ, इसका ट्रेलर जो है वो थ्रिलर फिल्म की दिलचस्प झलक दिखा रहा है। इसमें अजय देवगन जहाँ एक बार फिर विजय सलगांवकर के रोल में वापसी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर तब्बू भी मीरा देशमुख के रोल में अपने बेटे की हत्या का बदला लेने लौट रही हैं। जयदीप अहलावत की फिल्म फ्रेंचाइज में नई एंट्री हुई है और बस इंतजार की घड़ियां अभी गिननी बाकी हैं। और जब तक हम इंतजार करते हैं तब तक हम क्या करें, इस कार्यक्रम में जी हाँ बात करूंगी आने वाली फिल्म को लेकर, जो कि रिलीज होगी कल यानी कि 11 सितंबर और बस इंतजार है कुछ ही घंटों का। उसके बाद नए फिल्मों को देखने वाले

शौकीन हैं उन्हें तो बस इंतजार होगा कि कब शुक्रवार की सुबह हो और रिलीज हो जाए नई फिल्में और हम हमारे बेहतरीन कलाकारों को फिर से सिनेमा के बड़े पर्दे पर देख सकें। तो चलिए उस फिल्म की बात मैं करना चाहूँगी जो कि रिलीज हो रही है कल यानी कि 11 सितंबर को और हैवान फिल्म का नाम है। जी हाँ, जिसमें एक्शन भी है और थ्रिलर भी है, यानी कि जो लोग एक ही फिल्म में एक्शन के साथ साथ थ्रिलर देखना चाहते हैं उन्हें ये फिल्म पसंद आ सकती है। और अगर डायरेक्टर की बात करूँ तो प्रियदर्शन द्वारा डायरेक्ट की जा रही है इस फिल्म को और अक्षय कुमार, सैफ अली खान, बोमन ईरानी के बेहतरीन अभिनय को देखा जाएगा इस फिल्म में। प्रियदर्शन की एक्शन थ्रिलर एक खतरनाक संघर्ष पर आधारित है जो कि बहुत अलग अलग पुरुषों को एक तनावपूर्ण और अप्रत्याशित स्थिति में डाल देती है। और ये जो फिल्म है, जी हाँ, हैवान जिसका नाम है, ये रिलीज होगी कल यानी कि 11 सितंबर को। और भाई जो नई फिल्मों के शौकीन हैं उन्हें तो बस चैन का है ना कि कब सुबह हो और कब हम हमारे चहेते कलाकारों को नई फिल्म के ज़रिए देखें और उसके बाद रिएक्शन की बात तो खैर बाद में आती है, लेकिन पहले इंतज़ार है कि भाई हमारे जो चहेते कलाकार हैं, एक्टर्स हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और दिलो जान से वो ये चाहते हैं कि हमारे पसंदीदा कलाकारों की फिल्में जो हैं वो पसंद आनी चाहिए। अब रिएक्शन कितना क्या होगा नहीं होगा इसके लिए तो बस करना है इंतज़ार, लेकिन इस कार्यक्रम में इंतज़ार की कोई भी जगह नहीं है और इसीलिए सुनवाऊंगी आपको एक प्यारा सा तराना। जी हाँ, सुन रहे हैं आप इस कार्यक्रम को जिसका नाम है 3 का तड़का।

ए आर रहमान और चिन्मय की आवाज़ में सुन रहे थे आप इस बहुत ही प्यारे से तराने को फिल्म गुरु से। इसी के साथ ख़त्म होता है आज के इस कार्यक्रम का सिलसिला, यानी कि तीन का तड़का कार्यक्रम करना चाहूँगी यहीं पर समाप्त। लेकिन जाने से पहले अरिजीत सिंह की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा सा तराना छोड़े जाना चाहती हूँ, जो कि कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत होगा। इससे गीत को सुनते सुनते शर्मिशा को दीजिएगा इजाज़त, आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगी। मिलूंगी बहुत जल्द इसी जगह इसी चैनल पर दोबारा, समय रहेगा शाम के 7 बजे, लेकर आऊँगी कार्यक्रम छालोक। तब तक के लिए ट्यून रहिएगा 107 FM रेनबो के साथ और सुन रहे थे कार्यक्रम तीन का तड़का।

0: with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: सुनछो कैफे कोलकाता 107 FM रेनबो ते कैफे कोलकाता।

7:09 है, स्टूडियो की घड़ी का समय 107 एफएम रेनबो पर। दोबारा शर्मिष्ठा करती हैं आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। इस वक्त लेकर आ चुके हैं आपकी रेडी दोस्त कार्यक्रम बहुत खास, जिससे आप जुड़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया है 107 एफएम रेनबो के अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारे ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शाम के इस कार्यक्रम की, जिसका नाम है छायालोक। और गुरुवार की शाम है तो हम छायालोक के अंतर्गत लेकर आते हैं आप सभी के लिए कुछ खास कुछ अलग। यानी कि गुरुवार की शाम छायालोक के अंतर्गत हम बातें करते हैं सीन सीनरीज। जी हाँ, उन खूबसूरत बैकग्राउंड सीन्स के बारे में जहाँ पर अलग अलग फिल्मों के अलग अलग सीन्स की शूटिंग की जाती है। तो आज बात करेंगे उन्हीं खूबसूरत शूटिंग लोकेशंस की। लेकिन लेकिन लेकिन जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ अलग है। जी हाँ, वैसे तो गुरुवार की शाम नज़ारा फिल्मों का में बहुत से अलग अलग जगहों की हम शूटिंग की बातें करते हैं कि अलग अलग जगहों पर पहाड़ें हो गई या फिर समुद्र के किनारे या फिर चलते फिरते सिटी के अंदर जिन फिल्मों की शूटिंग हुई है उनके सीन्स को लेकर भी हम बातें करते हैं। लेकिन आज करेंगे थोड़ा अलग, थोड़ा हटके, है ना। तो आखिर हटके क्या होगा, अलग क्या होगा, खास क्या होगा, बातें करूंगी उसके बारे में भी। लेकिन फिलहाल एक बहुत ही प्यारा सा तरह आप सभी सुनने वालों के लिए जुड़े रहेगा इस कार्यक्रम के साथ पूरे 9 बजे तक। और चलिए रुख करते हैं एक फिल्मी गीत की ओर। इस गीत को सुनते सुनते मैं बात करूंगी शूटिंग लोकेशंस की। लेकिन आज शूटिंग लोकेशन आखिर कहाँ का होगा, जी हाँ, कौन से शूटिंग लोकेशन के बारे में आज के इस कार्यक्रम में बात करूंगी। इसे सुनने के लिए आपने जुड़े रहना है इस कार्यक्रम के साथ। फिलहाल आशा भोंसले

7:17 है स्टूडियो की घड़ी का समय। छायालोक के अंतर्गत नजारा फिल्मों का इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं आप सभी श्रोता, और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए अपनी ट्यून क्या है 107 FM रेनबो के अलावा न्यूज होने ऐप पर भी हमारे प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। सुन रहे हैं आपके रेडियो दोस्त शर्मिशा को, और चलिए बात करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। फिल्में मनोरंजन का वो साधन है जो हर किसी के दिल को रास आता है। लंबे समय से हिंदी सिनेमा अपने शानदार मूवीज के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करता आया है। जी हाँ, अगर मनोरंजन की ही बात करें तो फिल्मों में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि गीत संगीत की अगर बात करें तो पूरी मूवी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें गाने सुनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, चाहे कहानी चाहे जो भी हो, बैकग्राउंड के सीन सीनरी चाहे जो भी चल रहे हों, लेकिन उन्हें गीत संगीत से इतना ज़्यादा लगाव होता है कि चाहे और भी चीज़ें कैसी भी हों लेकिन गाने अगर अच्छे हों तो फिर फिल्म उनके लिए हिट ही होती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अभिनेता अभिनेत्रियों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, और चाहे दूसरी चीज़ें कैसी भी हों लेकिन पसंदीदा अभिनेता और अभिनेत्री उनके चेहरे के उनकी आंखों के सामने अगर मौजूद हों तो फिर क्या ही कहने। और कुछ श्रेणी के लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पीछे चल रहे बैकग्राउंड के जो सीन सीनरी होते हैं वो बहुत ज़्यादा भाते हैं, और उन सीन सीनरी के ज़रिए एक ही जगह पर बैठे बैठे उन्हें देश विदेश हर जगह की सीन सीनरी को देखने का मौका मिल जाता है। और वाकई में आज ऐसे ही कुछ सीन सीनरी को लेकर ही हम बात करेंगे, क्योंकि नज़ारा फिल्मों में अक्सर इन्हीं सीन सीनरीज को लेकर ही हम बात करते हैं। लेकिन बॉलीवुड की दुनिया में कुछ ऐसी फिल्में भी बनी हुई हैं जिनके शूटिंग लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो फिल्म की शुरुआत भी एक ही जगह से हुई होती है और फिल्म जब खत्म होती है तब भी लोकेशन वही होता है। यानी कि एक सीन एक फिल्म और लोकेशन भी एक ही। बॉलीवुड में कई ऐसे बेहतरीन फिल्में बनी हैं जिनकी पूरी या फिर लगभग पूरी शूटिंग सिर्फ एक ही लोकेशन, जैसे कि एक कमरा कह लीजिए या फिर घर या फिर एक इमारत, जी हाँ उसी एक जगह को घेर कर वो पूरी कहानी बन जाती है। और आज के इस कार्यक्रम में कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में बात करूंगी जिनका शूटिंग लोकेशन एक ही जगह का रहा है, और हो सकता है वो एक ही इमारत हो, एक ही कमरा हो या फिर एक ही फ्लैट का वही छोटा सा घर जिसमें फिल्म की जो कहानी है वो शुरू होती है और ख़त्म होते वक्त भी सीन वहीं का रहता है। तो सबसे पहले बात करना चाहूँगी इस लिस्ट में फिल्म 36 घंटे की, जो कि बनी थी साल 1974 में। सुनील दत्त, राजकुमार के अलावा माला सिन्हा और परवीन बॉबी जैसे कलाकारों से सजी थी ये फिल्म जिसका नाम है 36 घंटे। और ये जो फिल्म है बहुत से फिल्मों के लिस्ट में इस फिल्म का नाम मैंने सबसे पहले लिया, और इस फिल्म को एक ही लोकेशन पर फिल्माया गया था। बातें करूंगी और भी ऐसी फिल्मों के बारे में जिनके शूटिंग लोकेशन की अगर हम बात करें तो एक ही एक जगह थी। तो चलिए रुख करते हैं एक प्यारे से गीत की ओर, और उसके बाद और भी बहुत से फिल्मों के बारे में बात होंगी आज के इसी कार्यक्रम में।

7:26 मिनट है चुड़ी घड़ी का समय और अगली फिल्म की ओर आगे बढ़ूं उससे पहले सभी श्रोताओं तक इस ज़रूरी जानकारी को मैं पहुंचाना चाहती हूं कि ठीक 7:30 पर 107 FM रेनबो पर आप जुड़ सकते हैं कमेंट्री किस लिए कमेंट्री जी हाँ वुमेंस एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है दुबई में और इस खेल की कमेंट्री को आप सुन सकते हैं 107 FM रेनबो पर समय रहेगा 7:30 तो कमेंट्री अगर सुनी जाएगी 7:30 तो फिर हमारा ये पसंदीदा कार्यक्रम भला आप कैसे कहाँ सुन सकते हैं ना ये एक बड़ा सवाल है तो चलिए इस सवाल का जवाब मैं आपको देती चलूँ न्यूज़ ऑन एयर जो कि हमारा ऑफिशियल ऐप है इस पर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 7:30 से तो चलिए इस ज़रूरी सूचना को पहुंचाया आप सभी श्रोताओं तक कार्यक्रम चल रहा है छायालुक के अंतर्गत नज़ारा फिल्मों को और अगले फिल्म की ओर आगे बढ़ूं उससे पहले एक बहुत ही प्यारा सा तराना जुबिन नौटियाल और श्रेया घोषाल की आवाज़ में आप सभी सुनने वालों के लिए

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: सात बजकर 32 मिनट है, स्टूडियो की घड़ी का समय न्यूज़ ऑन एयर पर। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम छायालोक के अंतर्गत नज़ारा फिल्मों का। चलिए आज के इस कार्यक्रम में बातें हो रही हूँ उन फिल्मों को लेकर जिनकी शूटिंग लोकेशन के तौर पर शूट हुई पूरी कहानी। जी हाँ, शुरू से लेकर अंत तक पूरी कहानी शूट हुई सिर्फ और सिर्फ एक ही शूटिंग लोकेशन पर। तो अगले फिल्म का बात की बात अगर मैं करूँ तो रिलीज़ हुई थी फिल्म साल 2018 में। फिल्म का टाइटल दिया गया था पीहू। ये एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसमें पूरी कहानी एक घर में अकेले छूट गई 2 साल की बच्ची के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इस फिल्म की कहानी, इसका अधिकांश हिस्सा एक ही घर और फ्लैट के अंदर शूट किया गया था। इसके बाद बात करना चाहूँगी साल 1999 में बनाई गई फिल्म कौन को लेकर। डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म कौन को 27 साल पहले बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया था। ये फिल्म एक साइको किलर की सस्पेंस से भरी कहानी

कहानी थी। मनोज वाजपेयी और उर्मिला मातोंडकर जैसे कलाकार कौन मूवी में अहम भूमिकाओं में नजर आए थे। इस फिल्म की शूटिंग को एक ही घर में शूट किया गया था। उर्मिला और मनोज वाजपेयी स्टारर ये सस्पेंस थ्रिलर फिल्म एक ही घर के अंदर एक तूफानी शाम को फिल्माई गई थी। बात होंगी और भी बहुत से फिल्मों को लेकर, जी हाँ, जिनके शूटिंग लोकेशन के तौर पर एक कमरा या फिर एक पूरी इमारत के अंदर ही पूरी की पूरी कहानी को शूट कर लिया गया था। तो चलिए रुख करते हैं एक फिल्मी गीत की ओर और उसके बाद बात करूंगी और भी कई सारी ऐसी फिल्मों के बारे में।

हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में सुन रहे थे आप इस गीत को। और चलिए इस गीत को सुनते सुनते फिर एक बार उन्हीं फिल्मों की ओर रुख करते हैं जिनकी शूटिंग बेसिकली एक कमरे में या फिर एक इमारत के अंदर ही शुरू होकर ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा ही एक सिलसिला चल रहा है आज के इस कार्यक्रम में। और चलिए अगली फिल्म के बारे में बात करते हैं जो कि बनी थी साल 1986 में। जी हाँ, और टाइटल दिया गया था एक रुका हुआ फैसला। ये क्लासिक फिल्म एक ज्यूरी रूम यानी कि अदालत के निर्णय कक्ष में शूट की गई थी और जहाँ पर 12 लोग एक हत्या के मामले में बहस कर रहे होते हैं। और इस कोर्ट रूम में इस फिल्म की कहानी को शुरू किया जाता है और जब फिल्म की कहानी ख़त्म होती है यानी कि जब फिल्म ख़त्म हो रही होती है तब भी फिल्म की शूटिंग का जो लोकेशन होता है वो जो लोकेशन है वो वही यानी कोर्ट रूम वाला जो कमरा था वहीं पर वो फिल्म ख़त्म होती है। यानी कि ये जो फिल्म है एक रुका हुआ फैसला शुरू होकर अंत तक शूटिंग लोकेशन की अगर बात करें तो कोर्ट रूम ही था शूटिंग लोकेशन। उसके बाद एक और फिल्म के बारे में भी बात करना चाहूँगी जो कि रिलीज हुई थी साल 2007 में। टाइटल दिया गया था भेजा फ्राई। विनय पाठक और रजत कपूर की ये कॉमेडी फिल्म मुख्य रूप से एक अपार्टमेंट के अंदर ही सेट किया गया था इस फिल्म के लोकेशन को और शूटिंग भी पूरी फिल्म की कहानी शूट हुई थी उसी एक अपार्टमेंट में। तो इस तरह की और भी फिल्मों को लेकर बात होगी इसी कार्यक्रम में, जुड़े रहिएगा इस कार्यक्रम के साथ। कार्यक्रम चल रहा है छायालोक के अंतर्गत नज़ारा फिल्मों का।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

7:50 है चुड़ी घड़ी का समय और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम छायालोक। और गुरुवार की शाम है तो छायालोक के अंतर्गत हम लेकर आते हैं आपके लिए नज़ारा फिल्मों का। और आज के इस कार्यक्रम में बातें हो रही हैं कुछ ऐसी फिल्मों को लेकर जिनके शूटिंग लोकेशन के तौर पर चुना गया एक ही कमरा या फिर एक ही इमारत, और इसी छोटी सी जगह पर पूरी एक फिल्म की शूटिंग कर डाली गई। तो इस वक्त बात करना चाहूँगी एक ऐसे फिल्म के बारे में जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ साथ अजय देवगन के बेहतरीन अभिनय को हमने इस फिल्म में देखा था। जी हाँ, फिल्म रिलीज हुई थी साल 2004 में और टाइटल दिया गया था रेनकोट। ऐश्वर्या राय बच्चन और अजय देवगन की ये भावात्मक फिल्म एक ही मकान और उसके एक कमरे के अंदर बारिश के दिन की कहानी पर आधारित है ये फिल्म, और एक ही घर के छोटे से कमरे में शूट किया गया था पूरी इस फिल्म को। और बहुत ही सुंदर अभिनय किया था अजय देवगन के साथ ऐश्वर्या राय ने इस फिल्म में। इसके अलावा साल 2016 में एक और फिल्म बनी थी जिसका नाम था फोबिया। राधिका आप्टे की ये मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म भी एक घर और अपार्टमेंट के दायरे में ही फिल्माई गई थी। तो बॉलीवुड की दुनिया में ऐसे बहुत सी फिल्में बनी हैं जिनकी शूटिंग के तौर पर चुना गया सिर्फ और सिर्फ एक ही शूटिंग स्पॉट, यानी कि एक कमरा या फिर एक पूरी इमारत। जी हाँ, और इसी छोटी सी जगह पर फिल्म की शूटिंग की शुरुआत होती है और ख़त्म भी उसी जगह पर हो जाती है पूरी फिल्म की कहानी।

आप से बस थोड़ी ही देर में छायलों के दूसरे भाग में आपके साथ जुड़ेंगी आपकी रेडियो दोस्त देविका गुप्ता। तब तक के लिए ट्यून रहिएगा चैनल जी हाँ 107 FM रेनबो के अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारा ये प्रसारण इस वक्त आप सुन रहे हैं और छायलों के अंतर्गत नज़ारा फिल्मों का इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं इस वक्त आप और जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम के साथ साथ रहिएगा इस कार्यक्रम के पूरे 9 बजे तक।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

वेल फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक म्यूजिकल यॉर्स पर। कार्यक्रम शुरू हो चुका है छायालोक, और छायालोक के इस दूसरे घंटे में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त और होस्ट देविका। और अभी स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 8:08 और 8 सेकेंड, यानी 8:08। लेकिन आपको बता दें, आज की शाम हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहतरीन तराने, और बेहतरीन तरानों का मतलब है कि ऐसे खूबसूरत तराने जिन्हें चुन चुन कर खास तौर पर आप ही के लिए लेकर आए हैं हम। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में आपने सुना एक गीत श्रेया घोषाल की आवाज में, वैसे तो थोड़ा सा वो गीत जो है वो बच के बंद हो गया, लेकिन फिलहाल वो गीत जो है फिर से आपका इंतजार कर रहा है। तो आप सभी के लिए पेश है ये गीत श्रेया घोषाल की आवाज में। इसके पहले आप सुन रहे थे रांझना फिल्म से टाइटल ट्रैक, आप सभी का स्वागत हुआ इसी गीत के साथ। तो फिलहाल आप सभी के लिए पेश है ये गीत, और गीतों की बहार है आज के कार्यक्रम छायालोक में।

श्रेया घोषाल की आवाज में आप सुन रहे थे ओ बे खबर। फिल्म का नाम एक्शन रीप्ले। और दोस्तों आपको बता दें कि स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 8:12 और 30 सेकंड। फिलहाल आंखों की गुस्ताखियां कविता कृष्णमूर्ति की आवाज कुमार सानू के साथ आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक म्यूजिकल यॉर्स पर कार्यक्रम छायालोक।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

वेल फ्रेंड्स, ऑन स्क्रीन नजर आए थे इस गीत में शाहरुख खान और उनके साथ थी आप सभी की फेवरेट यानी कि महिमा चौधरी। और दोस्तों आपको बता दें, ये जो गीत था, इस गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, नदीम शवन ने इसे धुन में पिरोया था और फिल्म परदेश के इस गीत को आप सुन रहे थे 107 FM रेनबो दिल से दिल तक म्यूजिकल यॉर्स पर कार्यक्रम छायालोक में।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।

उदित नारायण की आवाज आप सुन रहे थे इस गीत को एक साथ एफएम रेनबो दिल से दिल तक म्यूजिकल यार्स पर। और उदित नारायण की आवाज तो थी ही, लिरिक्स जो है वो लिखे थे जावेद अख्तर ने। और दोस्तों आपको बताएं कि और प्यार हो गया फिल्म से आप सुन रहे थे ये गीत। ऑन स्क्रीन जो है वो नजर आए थे बॉबी देओल। तो आपको बता दें कि बॉबी देओल के साथ ऐश्वर्या राय भी थी इस फिल्म में, लग रही थी बेहद खूबसूरत। और फिलहाल एक बेहद ही खूबसूरत सा गीत, बेहद ही खूबसूरत सा तराना जो है वो कर रहा है आप ही का इंतजार। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का अगला तराना। आप सुन रहे हैं 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक म्यूजिकल यॉर्स पर कार्यक्रम छाया लोक।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

हाय वे फिल्म से सुल्ताना के साथ ज्योति नूरन की आवाज में आप सुन रहे थे इस गीत को 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक म्यूजिकल यॉर्स पर। कार्यक्रम छायालोक में मैं देविका लेती हूँ आपसे इजाजत। चलते चलते प्रीतम नीरज और मोनाली की आवाज में फिल्म रेस से ये गीत। गुड नाइट शबा खैर।

उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। उधर तुम हंसी हो।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ किले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्हें ने बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
0: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्ही से आंखें चार होती है, है ना?
1: हटो चापलूस कहीं के।
0: सच दीपा तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगी। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वा। उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे, और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई।